मै खडेरी ढूर बनख भुर्र उठथु। तब तुम मोर लाग पानी बनख बरसत। एक गची के मिलन के बाद वो एक काम के प्रकाश तुहिन बाप ना का उड़ा का फिर से मन से दूर ले जाए। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव बा, कारण तू बद्रे मैं धरती। हाँ वो एक दूसर से दूर रख पे कर कब्बुनी और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।

मैं खड़ेरी धूर बनकर भुर्र उड़तू तब तू मोर लाख पानी बनकर उड़ एक गची के मिलन के बाद वो एक काम के प्रकाश तू इन बाप बनाकर उड़ा कर फिर से मैं इनसे दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव बात कारण तू बदले मैं धरती हाँ वो एक दूसरे से दूर रख पे कर कब्बुनी और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।